0: आयो नहीं जन्म आकारत कीना।
1: मैं हुणे एक बेनती तुहाडे चरणा विच करदे आ, नवीआं संगतां काफी आईआं ने, कई वारी नहीं पता हुंदा जदों आपां सहज पाठ साहिब जी दा भोग पावांगे जी सब तों लास्ट ते, उदों तुसीं नाल नाल सलोक पढ़ने आ। हुण केवल सरवण करने आ, संगतां दी आवाज हुंदी सी कुझ नाल पढ़दे आ प्रेम दे नाल। सो बेनती है जदों आपां सहज पाठ साहिब जी दा भोग पावांगे महाराज जी दी ताबिया तों, उदों फिर सारे आपां नाल नाल महाराज जी दे श्लोक गायन करांगे। हुण केवल तुसीं सरवण करना।

कहो नानक सोनरे मना दुर्लभ मानुख चेह माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन।

दुख मैं संग ना कोई, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो, मिटयो ना।

करनो हो तो सो ना कियो, पर्यो लोभ कै फंद। नानक समयो राम गयो, आप क्यों रोवत अंध। मन माया मैं राम रहयो, निकसत नाहिन मीत। नानक

कहो नानक मन सिमरते पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहा करे जग सुपने जो जान। इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कहयो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैचिन मैं मीत। जेह प्राणी हर जस कहयो नानक तेह जग जीत। जेह घट सिमरन राम को सो नर मुकता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान।

सुहान तजत नहीं नित, नानक एह बिद हर भजौ, एक मन होए एक चित, तीरथ बरत अर दान कर, मन मै धरै गुमान, नानक नेह फल जात ते, जो कुंचर इसनान, सिर कंपयो पग डग मगै, नैन जो

नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बाल छुट क्यों बंधन परे कछु ना हो।

किन जपयो गुर मंत्र राम नाम और मैं गहयो जा कै सम नहीं कोई जेह सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार।

नंदन प्रथम प्रथम राग भैरव वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुन्याकी गाव है बंगली पुन असलेथी की भई बारी ए भैरव की पाचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगालम मध माधव गाव है ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पाचौ थाप है गोड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुति उचारी तनासरी ए पाचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उभारा खाओ खाट औ पौरा नद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै भार जा संग लाई पांचौ आर जा सुरमानंद भास्कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान ओ आहे विनोदा गाव है सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पाट

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵੰਤ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। MP ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, MP ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਹੱਲਣ, ਅਤੇ ਭਾਈ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਪੂਰਨਤਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੜੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਪਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਵੀਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਵੀਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ, ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵਾਂ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੱਦ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਆ ਇਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇੜਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ अज भी शरीर कंबदा आ क्योंकि एडे वे महापुरखों को बहना भी कोई आसान गल नहीं क्योंकि इन्ना इन्हों का प्रताप हों जो भी मूहे आते नेत्र उच्चे नहीं होंगे सके महाराज इन्होंने हमेशा चढ़ती कला बख्शे इन्ह तो इस तरह ही कौम की सेवा लेंदे रह पर दास महाराज के चरणा च अरदास बेनती करता है भी परमात्मा इन्हों हमेशा चढ़ती कला रखियो इस तरह कैलगी के द्वारा फिर समागम करवा महाराज के मूहे चरणा दे अरदास बेनती करद महाराज इदा के कार्य गांह तो भी सब तो करवाते रह सेवा दे दौरान जिन्हें ने संथिया वीर ने लई आ सेवादार ने संगत ने बहुत सहयोग किया पर सेवा प्रबंध के बहुत कमियां हो गई होनगियां क्योंकि इन्ने योग नहीं असी क्योंकि बहुत वड्डा कार्ज सी दास दोने हाथ जोड़ के समूह साध संगत तो सेवादारा तो सारे ही कथावाचकों को हाथ जोड़ के माफ़ी मंगता है भी कोई गलती अनजाने च हो गई होता असी भुलण अपनी माफ़ी मंगते हैं कृपा करो गांह तो साड़ी अरदास महाराज के चरणा च करो भी गांह तो असी वध चढ़ के इस तरह की सेवा कर सकीए बड़ी खुशी की गल आ अज चार कमेटियां के मैंबर इकट्ठे हुए ने जिस तरह आपां नूं पता ही है कि परमीत सिंह गोपा राय जो एम एल ए ने अज पहला इस गुरु घर के मुख सेवादार होया करते भी अज हाजिर होए ने उन्हां तो बाद साढ़े अमरप्रीत भीर जी जो एम पी ने उन्होंने मुख सेवादार की सेवा निभाई उस तो बाद जी पिछली बार कमेटी से उन्होंने चेयरमैन साहब गुरजीत सिंह अज पहुंचे ने ऐतकी कमेटी के भी साढ़े कमेटी के सज्जन सहयोग भी पहुंचे हुए ने सारिया का बहुत धन्यवाद एक बार फिर मूह साध संगत तो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगते हैं जे कोई गलती हो गई कृपा करो असीस दौ गांू इदा के कार्य आप हो कर सकी एक बार फिर समूह साध संगत समूह सेवादार इन्ह कार्यों की लख लख बधाई हो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
1: श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह संघ जी सन सरदार हरपाल सिंह जी मुख सेवादार प्रबंधक कमेटी जो आप भी इस समागम के दौरान आप जी ने नोट किया होगा कि सरदार हरपाल सिंह जी एक पहरेदार की सेवा होर सेवावां विच आप जी नूं सामने दिखाई देंदे होणगे हुण मैं आप जी दे सन्मुख संबोधन करन दे लई आ रहे हन गुरु घर प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार रणवीर सिंह जी परमार जो संगतां नूं बधाई देण आ रहे हन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
3: गुरु चरणा विच शोभित सत्संग जीओ फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो जैसे तत् न जाई जिमें हरपाल सिंह उन्होंने दस्या कि बड़ा वड्डा समागम सीगा जिदन पहली मीटिंग हुई सी उदन सारी विचार वटांदरा होया भाई रविंदर सिंह उन्होंने कहा कि जिमें आप दस रहे मेरा दिल करता है कि जरूर एक क्लास अटेंड करें पर अनफोर्चुनेटली मेरी शिफ्ट उस हिसाब नाल सी काम की तो 8 बजे इतने समाप्ति हो जाती 8:30 मेरी शिफ्ट जी खत्म होंगी सी पर फिर भी इंटरनेट से माध्यम राही जो सुनने का मौका मिले गुरमुख प्यारे जो स्टेज तो बाणी पढ़ते सन बड़े सहज मत दे नाल क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की बाणी ऐसी है जो सिख पंथ नूं ही नहीं समुची सृष्टि नूं अपने कलावे विच लैंदी है जिथों प्यार दा सुनेहा मिलता है सो जो गुरमुख प्यारे सहज दे नाल पढ़ते ने विचार करते ने उन्हां दे विच तत् आ जांदा अज ट्रेंड की है जिवें हैल्थ दा ट्रेंड चल रहा इहदा वेट वध जांदा उह कहिंदे वी हैल्थ डाइटिशियन कोल जाओ उह फिर खाने दसदा उहदे विच वी तत् की है इवें जदों सहज सहज नाल बाणी पढ़ते हैं तो सानूं पता लगदा इहदे विच तत् की है प्यार दा तत् है शहीद भाई अमरीक सिंह जी एक गल क्या करते सीगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सूरज जी न्याय ने तो असी सारे इस दियां किरणा हाँ, वो किरणा तां ही बन सकांगे जे असी गुरबाणी दी विचार नूं समझांगे। ये कोई कल्ले पढ़न दा विशा नहीं, कमाउण दा भी विशा है। सो अज खास करके जिवें वीर जी ने कहा, हरपाल सिंह भाई रविंदर सिंह जी इन्हां दा बहुत वड्डा इहदे विच योगदान है, इन्हां दा आइडिया सीगा। ते बाकी आप जितने भी सेवादार हो, चाहे लंगर च कीती है जां पहरे ते सेवा कीती है, ते होर ग्रंथी साडे सारे ग्रंथी साहिबान जां होर बाहरों आए सन, बाबा अवतार सिंह जी जो कि इन्हां दे घर दे विच सिखी है, संत बाबा ज्ञानी गुरबचन सिंह जी उन्हां दे पोतरे ने, उत्तों ही दात मिली है। होर भाई महेंद्र सिंह जी आए सी अपने गुरमुख प्यारे कथावाचक हरमित्र सिंह जी, ते होर गुरमुख प्यारे ने भी जां जिन्हां दी ड्यूटी सी इत्थों बाणी पढ़न दी, सारे ही बहुत वधाई दे पात्र ने। ते मैं दिलों उन्हां दा धन्नवाद करना चाहुंदा कि सच्चे पातशाह उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण। ते मेरी इक्को बेनती कि अज पंथ नूं लोड़ है कि असीं वध तों वध बाणी दे नाल जुड़ के आपसी प्रेम प्यार पैदा करिए, एक दूजे नूं गल वकड़ी दे विच लैणा सिखीए। अज पंथ नूं लोड़ है, जो पंथ ते अज चल रहा है वह कोई बड़ा अच्छा नहीं, जे इहदी विचार करिए उहदे कसूरवार असीं खुद ही हाँ। सो आओ आपां बाणी दे नाल जुड़ के उहदे तत्त नूं समझिए, बाणी की कमाई करिए, आपस विच प्रेम प्यार पैदा करिए। सो सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
1: वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन चेयरमैन साहब सरदार रणबीर सिंह जी परमार, आप जी का बहुत बहुत धन्नवाद। मैं अपनी सारी कमेटी का बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने उच्ची सोच नूं मुख रखदे हुए ये महान पाठ बोध समागम नूं करवाउण दे लई सतगुरां दी कृपा दे नाल पूरन पूरन सहयोग दिता है। गुरु प्यारी सतसंगत जी, पाठ बोध समागम दे दौरान संगतां वलों तकरीबन $11,000 इकट्ठे किए गए सन, जो पिछे सचखंड दे सुंदरीकरण हो रहा है उसके बारे मैं भाई हरविंदर सिंह जी हुणां नूं बेनती करांगा कि वह भाई हरपाल सिंह जी मुख सेवादार ते चेयरमैन साहब भाई रणवीर सिंह हुणां नूं माया भेट करनगे।

शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। साहिब कमाल पीरान पीर मीरान मीर वालिए कुल आलम सरवरे कायनात, दसाही पातशाहियों की आत्मक ज्योत, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत, सारी संगत दे असीस दास दी हाजरी प्रवान करो। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्रीमान भाई गुरदास जी दे बचन हन, जैसे तव सफल निद पूर्ण समुद्र बिखै, हंस मर जीवा निहचै प्रसाद पावे। जिस तरह समुद्र दे विच अनेकां ही खजाने होंदे ने, पर उन्हां खजानियां दी प्राप्ति समुद्र दे विच जिहड़े गोताखोर हन उन्हां दे हाथ ओह खजाने लगदे ने, ते जां हंस उन्हां खजानियां नूं प्राप्त करदे ने। जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सिद्ध, खनवारा खन जग बिखै प्रगटावे। पर्वतां दे विच अनेकां ही खजाने ने, पर उन्हां खजानियां नूं सिद्ध लोग जां जिहड़े पहाड़ नूं तराशन वाले ने ओह लिया करके संसार विच प्रगट करदे ने कि हीरा है, यह मानक है, यह पारस है। जैसे बन बिखै मलियागर सौदा कपूर, सोध कह सुबासी सुबास बहसावई। जंगल विच भी अनेकां सुगंधियां ने, पर उन्हां सुगंधियां दे पारखू उन्हां सुगंधियां दी परख करके उन्हां सुगंधियां नूं संसार दे विच महक दे रूप विच प्रगट करदे ने। कुछ दृष्टांत दे करके भाई गुरदास जी ने यह समझाया है, तैसे गुरबाणी बिखै सकल पदार्थ है, जोई जोई खोजै सोई सोई निप जावे। गुरबाणी दे अंदर धर्म अर्थ काम मोख ये सारे ही खजाने गुरु महाराज जी ने बख्शिश किए, पर यह खजाने जेडे खोजी हैं उन्होंने प्राप्त होंगे ने। और नाल ही भाई गुरदास जी ने दसिया, खोजी कैसा होवे, तैसे खोजी खोजै अल कमल कमल गत जाऊ ना परम पद संपुट समात है। कहिंदे खोज पता किस तरह की होवे गुरसिख की, जिस तरह भौरा कमल दे फुल ते मडराउंदा है, फुल विचों सुगंधी नूं खोजदा है, इसे तरह गुरु का सिख जिन्ना चिर परम पदवी की प्राप्ति नहीं हो जाती, बाणी नूं पढ़दिआं शब्द का अभ्यास करदिआं एक दिन शब्द रूप ही हो जाता है। और गुरु के सिख की वह खोज मुकम्मल दसी है। गुरु नानक देव महाराज जी नूं सिद्धा ने भी सवाल किया सी कि इन्ना बिखम पेंडा इत्थे तुहानू किहड़ी करामात लैके आई है, ते गुरु नानक देव साहब ने उत्तर दिता सी, गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। ये करामात गुरबाणी दी ते गुरु की संगत दी है। और शब्द गुरु सुरत धुन चेला, गुरबाणी दे लड़ ही गुरु नानक साहब जी ने सानू सारियां नू लाया है। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने शुद्ध बाणी पढ़न का महात्म दसिया सी कि किड्डा वड्डा है। जिस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब श्री हरगोबिंदपुर की धरती ते विराजमान होए, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने संगतां दे विच ये बचन कहा सी कि गुरु का सिख उठ के सानू शुद्ध जपजी साहब का पाठ सुनावे। महाराज जी का वचन सुन के भाई गोपाला जी उठे।

परम सम्मान योग गुरु खालसा साध संगत जी, प्यार सत्कार सहित सतगुरु की फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कबीर भगत कबीर जी फरमाते हैं कि मैं कुछ भी करन योगा नहीं सी, ना हम किया ना करेंगे, ना कुछ करे शरीर, क्या जानो कुछ हर किया, पयो कबीर कबीर। कहां बहुत प्रभु तुष हमारी, बारण सके मेहमान जो तिहारी, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जो की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन जीवै हरिया। गुरबाणी की संथिया पाठ बहुत समागम संपूर्ण होए, ना हम किया ना करेंगे, ना कुछ करे सिरी, इस सारी सतगुरु दी नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गोरे अवतार जगमग जोत विराज रही श्री गुरु ग्रंथ मजार। ये धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ही अपार मेहर होई है, जिस मेहर दा सदका एना वड़ा पाठ पूर्ण समागम नेपरे चढ़िया है। दास ते कुछ भी करन जोगा नहीं सी, जो संगत ने मान बख्शिया है, सत्कार दिता है, दास इसके काबल भी नहीं सी। साडे सतगुरु भी गरीब नवाज ने, संगत भी गुरु का रूप हुंदी है, जो संगत ने प्यार सत्कार बख्शिश किया है, दास को शब्द नहीं कि मैं उहदे बारे कुछ कह सकता, सिर्फ इन्ना ही कह सकता हाँ, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परों पर भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक योतों पर सुनियो गुरसंगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राख हो सकना। मेरा मुझ मैं किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपती क्या लागे मेरा। एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाव जी, पंथ विच महान हस्तियां ने, विद्वान ने, महापुरख ने, ज्ञानवान भी हैं, सेवा ते सिमरन वालियां रूहां भी हैं, अरदास ते किसी भी गिणती विच नहीं। ये सतगुरु ने कृपा की है ते उन्होंने ये आप सेवा ली है। साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह अगे वास्ते भी मेहर करन, इसे तरह निर्माण ते निष्काम सेवा करदे होए दास दी सारी जिंदगी बतीत होवे, इस दे नाल नाल जिन्ने विद्यार्थी जन सिखियार्थी सुरोते
गुरु की संगत ने पाठ श्रवण किया है, मैं जरूर बेनती करनी चाहांगा, ये पाठ सुन लेना ही काफी नहीं, तुसी अगे इस बाणी का अभ्यास भी करना। अभ्यास तो बिना विद्या भी फलीभूत नहीं होती। बड़ी खुशी की गल है, 118 गुरमुख प्यारिया ने सहज पाठ आरंभ करने दे लई लिस्ट विच नाम लिखवाए। इस दे नाल नाल गुरबाणी पाठ बहुत दा रिजल्ट भी बहुत सोहना आया। 41 दे करीब प्राणी अमृत साके गुरु के जहाज चढ़े ने। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेम दे गुर पारो तारना। वाहिगुरु का नाम जहाज है, गुरु नानक साहब उससे मला ने। याद रखो कला जहाज सानू समुद्रों पार नहीं कर सकता, मला की लोड़ है। मला सतगुरु ने जदों आपां गुरु वाले होके सिमरन भगती करते हाँ तो फिर ही असीं दरगाह दे विच प्रवान हो सकते हैं। वह भी वधाई के पात्र ने जिन्हां ने खंडे बाटे का अमृत छकिया है, तो जिन्हां ने संपूर्ण बाणी का पाठ बहुत सरवण किया है, वह भी वधाई के पात्र ने। तो जिन्हां जिन्हां ने जो जो भी सेवावां कीतियां है, तो सारे ही धनता योग ने ते वधाई के पात्र ने। सब तो वड्डी गल जेड़े गुरद्वारा साहिब जी के प्रबंधक सन, उन्होंने इस पाठ पूर्व समागम के हाजरियां भी भरिया, सेवावां भी निभाइया, ते नाल दी नाल उन्होंने संगतां नूं उत्साहित भी किया। वह भी सारे वधाई के पात्र ने। मैं तो सतगुरु के चरणों में यही अरदास बेनती करांगा कि जे प्रबंधक चाहन फिर इहो जे समागम होर भी चलते रह सकते हैं, पर भावें यह दूजा पाठ वो समागम है, पर इस दे विच जिवें संगतां ने उत्साह दिखाया है, हाजरियां भरिया, पर यह अपना पहला पलेठा समागम हो निपड़िया। इस गल की दास समूह संगत नूं ते प्रबंधकां नूं हार्दिक वधाई दिंदा है, ते इस दे नाल नाल जिन्हां गुरमुख प्यारिया ने पाठ की सेवा की थी, ज्ञानी अरविंदर सिंह जी लखारी, इन्होंने दास नूं इन्ना प्रेम दे विच कीलिया जवाब नहीं दे सकिया। मैं समझदा इन्हां दे अंदर भी गुरु ने ही यह कोई कला वरताई। पंथ विच विद्वान तां होर भी सन, पर इन्हां दा ख्याल दृष्टि दास वाल क्यों आई ये सतगुरु जानते हैं। चलो सतगुरु ने फिर आप ही कृपा की थी, इस समागम करवा भी ने। इस दे नाल नाल जेड़े जेड़े गुरमुख प्यारिया ने विच हाजरियां भरिया है, तो संपूर्ण पाठ बोध दे विच भाई साहब भाई इकबाल सिंह जी, भाई अर्शदीप सिंह जी, ते होर भी गुरमुख प्यारे गाहे अवगाहे हाजरियां भरते रहे, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। अखीर ते दास यही बेनती करदा है, देहो सज्जन असीसड़ियां, ज्यों होवै साहिब सोभी। सतगुरु कृपा करन साडी सेवा दर प्रवान कर लैण, विच दुनिया सेव कमाईऐ तां दरगह बैसन पाईऐ, कहो नानक बाहां लड़ाई। सारी संगत नूं प्रबंध नूं
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

फिर देह। गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, काथ काथ कथी कोटि कोट कोट। देदा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विगसै वे परवाहु। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाव अपार। आखह मंगह देह देह, दात करे दातार। फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार। मुहाओ के बोलन बोलियै जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानिया सब आपे सचियार। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान। गाविया सुनिया मन रखिया भाव, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहिया समाई। गुर ईसर गुर गोरख, बर्मा गुर पार्वती माई। जे हाओ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई, तीर्थ नावा जे तिस भावा। विन भाने के नाए करी, जेती सिरठ उपाई। वेखा विन करमा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर मानिक। जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानिया, नाल चलै सब कोए।

हो अंत ना जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाव ऊंचे उपर ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगह जोध अपार केते आ गणत नहीं विचार केते खाप तुटह वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साद मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए जे को खाएक आखन पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे के ई के जिसनो बख्से सिफत सालाह नानक पात साहि पात साह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वख्यान आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी ताय गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सोर नार मुन जान सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे हे ता आख ना सकहै केई के जेवड पावै तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल बेगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दार केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी स्यो कहियन केते गावन हारे गावह तुहनो पावन पानी बै संतर गावह राजा धर्म दुआरे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवत्या दार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुद नो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो से जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जेव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करह बिभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग वियोग दुयकार चलाव है लेखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान
ਓਹੋ ਵੇਖੈ ਉਨਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏ ਤੋ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਇੱਕੀਸ ਸੁਨ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੇ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ।

गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का अखोह कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरते सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तथा घाड़त घड़िया बहुत अनूप ता किया गला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछुताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबाल सूर तिन मह राम रहया भार।

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री वाहिगुरु जी की फतह है जाप, श्री मुख वाक।

है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजे है अजाद है अजन्म है अबरन है अपूत है अपरन है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेकी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपी हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुण काल जत्तर तत्र विराज ही अवधूत रूप रे साल
नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हुन है जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल

चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम तेन दुदह ते बाहरी कितै न आवै काम। जाल बिन साख कुमलावती उपजह नाही दाम हर नाह न मिलिया साजना कत पाइय बिश्राम। जित घर हर कंतना प्रगटई भट नगर से ग्राम सरब सिगार तंबूल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूनिया मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मिलहु स्वामी संग प्रभ जिसका निहचल धाम। चेत गोविंद अराधिया होवै आनंद घना संत जना मिल पाइया रसना नाम भना जिन पाया प्रभ अपना आए तिस है गणा। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल महियल पूरिया रविया विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा। जिनी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा। वैसाख धीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिछोहो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया धोहो पुत्र कलतरना संग धना। हर अविनाशी ओहो पलच पलच सगली मुई झूठै धंदै मोह। इकस हर के नाम बिन अगै लइय है खोहे दइयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवरना कोए। प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा था लगै जा संत भेटै हर सोए हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया जिस अगै सब निवन। हर सज्जन दावन लग्या किसै ना देई बन मानक मोती नाम प्रभ उन लगै नाही सन।

जी अंतर्गत होके अपने नाम सुनना जी हो, नाभ चक्र ते सुन सकते हो, हिरदा चक्र जिते दिल की धड़कन है उत्ते सुन सकते हो, कंठ चक्र जिते गले चो आवाज आती है उत्ते सुन सकते हो जी हो। किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान ले आने की कोशिश नहीं करनी जी हो। जिन्हां प्राणियों नू शब्द सुनते हैं उन्होंने शब्दों विच भी ध्यान रखना जी हो। जिन्हां गुरमुखां नू अजे नाम नहीं सुनता अंतर्गत होके उन्होंने श्वासां दे नाल सांस ग्रास सिमरन अंतर्गत करना जी हो। श्वास अंदर नू जांदा वाहे फील करना, श्वास बाहर नू आउंदा गुरु फील करना। इस तरह आपां कम करदे होए तुरदे फिरदे किसी भी टाइम सांस ग्रास अंतर्गत सिमरन कर सकते हैं जी हो। दो तीन मिनट मगरों फिर आपां रसना नाल जपांगे जी। कृपा करके नेत्र बंद रखने जी।

सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मानै जन कौ पूरन दीजै हाउ बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल बहुत जन्म बिछुरे थे माधव एह जन्म तुम्हारे लिखे कहरव दास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे दर्शन प्यासी दिनस रात चितवाओ आन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत हम हव गुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जाम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ

ओए साजन, ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत, आप सब संगत वट पागे हो। जो सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर मिल बैठ के इलाही बाणी सरवण करके अपने जीवन दियां कड़ियां नूं सफला बना रहे हो, सतगुरु कृपा करन सभना दियां हाजरियां दर प्रवान करन, दरों करों गुरसिखी जीवन दी दात गुरु चरणा नाल प्रेम अते प्रतीत बख्शिश करन। इतने कहाजरी दर प्रवान, सुआओ अगला समा सरवण करते हैं, दासियां दी फतेह प्रवान करने जी। बुलाओ पते आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

तेरा धार को आधार आसरो निरासन को नाथ है अनाथन को दीन को दयाल है। निराधार को आधार आसरो निरासन को नाथ है अनाथन को दीन को दयाल है। असरन सरन और निर्धन को है तन एक अंधन की आह किरपन किरपाल है।

हर हर नाम मिले त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तेन तोर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हार रस पाया, मिल

जी हाँ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जान जुग मैं सुखवासी, से मुक्त भये जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी, जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खाट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई,

मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़या, मूरख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरना।

इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है।

सारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पाल मोह बध कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। कीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घाट घाट के पट पट की जाने। जाब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह धर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब,

न तो हे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी ओत भुज खान बौहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव।

मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास। मैं होर थाओ नाही जिस पह करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। तू समरथ अकथ अगोचर,

तू ही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठै रंग गुर तुठै हर रंग चाड़िया फिर बहुड़ ना होवी भंग हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठै रंग गुर तुठै हर रंग चाड़िया फिर बहुड़ न होवी भंग मेरे मन हर ना आराम नाम कर रंग गुर तुठै हर उपदेसिया हर भेटिया रहो निसंग रहाओ मुंद इयाणी मनमुखी फिर आवण जाना अंग हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग हम मैल भरे दोह चारिया फिर राखो अंगी अंग गुर अमृत सार नवलाया सब लाथे किल विख पंग हर दीना दीन दयाल प्रभ सतसंगत मिल हो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग हर दीना दीन दयाल प्रभ सतसंगत मिलो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी भादोए भरम भुलाणिया दूजै लगा हेत लख सिगार बनाया कारज नाहीं केत भादोए भरम भुलाणिया

जित दिन देहे बिन ससी तित वेला कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी पेत छाड़ खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत हाथ मरोड़ा तन कपे

चरण बोहित प्रभ देत से पादोए नरक ना पाई है गुर रखण वाला हेत। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत से पादोए नरक ना पाई है गुर रखण वाला हेत। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।